जो तुम दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख तहना जाई। ठीक फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है है है सब जग भयो जय जय जय सुरलोक। धर्म खेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर ना दिया, शीश दिया सिर ना दिया। परम सम्मान योग चवर शत दे मालक तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान को बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी गणों खताबली दीवान विच हजूर दी चरण शरण विच आप जी ने हाजरी भरी है। इराकी गुरबाणी का कीर्तन आपने शरण किया है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे शहादत वाला दिन पिछे बतीत होया है, उस गुरु तेग बहादुर पिता जी दे पावन पवित्र जीवन उन्हां दी शहादत दी विचार आपां ने करनी। कोशिश यही करिए कि अरंभता तो लेके संखेप गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी नाल आपां सांझ पाईए। ठीक है, कई गुरमुखां नूं जीवनी दे संबंध विच बहुत जानकारी मिली, पर फिर भी कई ऐसे गुरमुख प्यारे संगत विच मिलणगे जिन्हां नूं गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी संबंधी शहादत दा तां जरूर पता है, पर गुरु तेग बहादुर जी होर की बख्शां कीतियां, किवें हर थां ते जुल्म नूं जबर नूं सतगुरु ने सबर दे नाल सह लिया। आओ उस गुरु तेग बहादुर जी दा धरिए ध्यान, जिस गुरु तेग बहादुर जी दा आगमन अमृतसर दी धरती ते होया है, गुरता गद्दी बकाले

जो लर दिन के खेत पुरजा पुरजा कट मर कबू ना छड़े खेत मरता मरता जग मुआ कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोए ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

अंश विचों भाई गुरदत्ता जी ने दिता है, गुरु तेग बहादुर जी बाबा बकाला तो अमृतसर गए ने, जिथे मसंदा ने दरवाजे बंद कर दिते, पर सतगुरु सरोवर विच इशनान करके किनारे ते बैठ के वापस पिंड बल्ले नू चले गए। सतगुरु ने परत के उस गुरु नानक साहब जी दे मिशन दा गुरमत दा प्रचार देश दे वक वक इलाकियां विच कीता है। मालवे दी धरती सतगुरु ने बिहार विच, बंगाल विच, आसाम दी धरती ते गुरु तेग बहादुर जी ने कीता है प्रचार। साध संगत कल आपां विचार कीती सी, गुरु तेग बहादुर जी ने नानकी चक वसाए जिन्हों बाद विच आनंदपुर साहब कहन लगे हैं। इसे आनंदपुर दी धरती ते कश्मीर दे विद्वान पंडित आए ने, जिन्हां ने आके फरियाद कीती है गुरु तेग बहादुर महाराज अज इस तिलक नूं, इस जन्यू नूं हिंदू धर्म दे, इस आरती नूं हिंदू मंदरां दे अंदर वज रहे घड़ियालां दी आवाज नूं, हिंदू मंदरां दीआं मूर्तियां दी पूजा जिहड़ी असीं कर रहे हां, इह तां बच सकदियां ने जे तुसीं साडी बांह पकड़ो, नहीं तां इस पूरे संसार दे अंदर गुरु तेग बहादुर जी तुहाडे तो इलावा साडी कोई बांह पकड़न वाला नहीं। साध संगत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कृपा दे खजाने मेरा दिशाई उन्हां दे चरणां विच जिहड़ी इन्हां अर्ज कीती सी ते गुरु बिलास विच बचन अंकत ने के दुखी विपर चल आए सो पुरी आनंद ते क्या सी बाहें असाडी पकड़िए श्री हर गोबिंद के नंद ते जेड़ा आ सजना गुरमुखा ने एक बचन पढ़े है इनू विद्वान कहिंदे ने एक भट चांद दा लिखिया है। साहब ने जदो उन्हां दे मुख राही बचन कहाए ने, पर है कवि दी रचना के चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचै बुरियाइयां, गुर शब्दी ए मन होड़िए बाएं जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजै बाएं ना छोड़िए। ते साहब ने एक गल कही सी, सजनो असी तां बाह घुट के फड़ा फड़ांगे, पर एक गल दा ख्याल तुसी भी रखिया जे कि तेग बहादुर बोलिया धर पईऐ धर्म ना छोड़िए। जमीन ते तां टुकड़े टुकड़े होके डिग पैना, पर कदी भी धर्म तो मुंह ना मोड़ना। आओ प्यारियो, उस गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी शहादत दा कारण सानू सब नू मालूम है, समाचार तो इस तो जानू हां असी। शहादत दा कारण इको सी तिलक ते जन्यू, केवल धर्म दी खातर सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर तो चलदे ने। आओ केड़े ढंग नाल शहादत होई, साहब नू शहीद करन तो पहला किवें उन्हां दे प्यारे गुरसिखां नू उन्हां दे नेत्रां सामने शहीद कर दिता, उन्हां गुरसिखां तो बाद गुरु तेग बहादुर जी नू शहीद कीता, किवें गुरु तेग बहादुर जी दा शीश गुरु का सिख भाई जैता आनंदपुर दी धरती ते लै के आया, ते किवें जिस थां ते गुरु तेग बहादुर शहीद कीते गए एक गुरु अस्थान किवें होंद विच आए, उस गुरु तेग बहादुर जी दे इस समुचे जीवन दी विचार गुरु कृपा नाल आपां ने करनी। अज नरोल इतिहासक विचार केवल अपने बजुर्गां दे, अपने सत्कार योग सतगुरु दे पवित्र जीवन नूं आपां विचार सकीए ते इन्ना कु पता लग जाए असी किन्ने कु अमीर विरसे दे वारस हां, किन्नी कु गुरु तेग बहादुर जी ने असाडे ते कृपा कीती। करो कृपा गुरमुख प्यारियो, आशीष बख्शो, गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दा ध्यान टिकाओ। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी आप ही सहाई हो, आप ही अपने पवित्र इतिहास दी विचार करा लवो। करो कृपालता गुरमुख प्यारियो, बड़े प्यार अदब दे नाल कोई भी रचना मेरे हजूर दे नाम तो वांझी ना रहे, अपनी सुरती बिरती नूं उस धरती ते लै जाओ जेड़ी इत्थों सैकड़े कोहां दूर है, जिथे गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत होई। सुरती टिकाइए उस अस्थान ते जिस अस्थान ते गुरु तेग बहादुर जी नूं कीता गया शहीद। करो कृपा प्यारियो,
बड़े प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुख प्यारियो, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जदो आनंदपुर साहब की धरती तो चलन लगे ने, ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे नाल पंज सिख तुरे ने। इन्हां विचों दो तां सके भरा ने, एक दा नाम है भाई मती दास, ते दूसरे दा नाम है भाई सती दास। ते ए दोनों जेड़े ने भाई पिरादा जी दे खानदान विचों ने, ते भाई पिरादा जी ओ गुरु के सिख होए ने जिन्हां ने गुरु अर्जन साहब जी दे वेले सिखी नूं कमाया, ते जिन्हां ने शब्द दे रस नूं माणे। ते भाई पिरादा जी दे जीवन संबंधी भाई गुरदास ने अपनी बाणी विच खास करके जिक्र कीता है। भाई पिरादा दी अंश विचों भाई मतीदास ते भाई सतीदास ने। भाई मतीदास गुरु का दीवान है, ते भाई सतीदास जेड़े ने गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा विच रहिंदे ने। ते मैं अर्ज कीती सी गुरु तेग बहादुर जी दे बचना नूं भाई साहिब भाई सतीदास जी फारसी विच जेड़े ने एदा उतारा करदे ने, ते सत्कार योग भाई साहिब भाई मनी जी सत मनी जिन्हां नूं मनीदास उस वक्त कहा जांदा सी, मनी राय भी शब्द वरत्या। भाई सतीदास दे फारसी तो पंजाबी विच तर्जमा गुरमुखी विच तर्जमा भाई साहिब भाई मनी सिंह करदे हुंदे सन। दो सिख भाई मतीदास सतीदास, तीसरे सिख ने भाई साहिब भाई दयाला जी, चौथे सिख ने भाई गुरदत्ता जी बाबा बुढ़ा जी दी अंश विचों, ते पंजवें सिख जेड़े तुरे ने इन्हां दा नाम है भाई उदय जी। पंज सिख अज गुरु तेग बहादुर जी नाल चले ने, ते इन्हां सिखां नूं भी पता है कि भाणा वापरना है, ते गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दी टेक लै के बड़े प्यार दे नाल सतगुरु दे रंग विच रंगे हुए तुर पए। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने सूरमे दा जिक्र कीता है। असी कई वारी सूरमे दी गल करने हैं, ते केवल इथों तक साडियां नजरां विच सूरमे दी परिभाषा है कि जेड़ा मैदाने जंग अंदर अपने तन दे टुकड़े टुकड़े करा लैंदा है, आपां कहिंदा केवल यह सूरमा है। पर गुरमुखां ने शब्द पढ़िया गुरु अर्जन साहिब जी दा, महाराज कहिंदे एक उह सूरमा है जेड़ा बाहर जूझ मरदा है, पर गुरु नानक साहिब दे घर अंदर केवल सूरमा नहीं, केवल सिपाही नहीं। इत्थे एक शब्द पहला वरत्या है संत। गुरु साहिब दे घर अंदर केवल शक्ति नहीं, एक शब्द पहला आया भगती। ध्यान रखना भगती ने संत नूं जन्म देना है, ते उस भगती विचों पैदा हुई शक्ति ने सूरमे नूं जन्म देना। सतगुरु ने बाणी विच खास करके जिक्र कीता है, कहिंदे जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कई तह सूरा आत्म जिने सगल वस पाकै, जाका सतगुरु पूरा जिन्हें अपने अंदर नूं जितया होया है। सतगुरु एहो जिहा सूरमे बारे कहिंदे ने कि जिन मिल मारे पंच सूर वीर, सो पूरा है कली रे जिन्हें अपने अंदर नूं जितया होया है। ए गुरु के सिख जिहड़े तुरे ने ए आत्मक जेतू भी सूरमे ने, अपने अंदर दे विकारां नूं भी जितया होया है। ते गुरु तेग बहादुर जी जदों तुर लगे ने, ते विद्वान सिख कहिंदे ने गुरु गोबिंद राय जी जिन्हां नूं आपां शब्द इस करके गोबिंद राय वरते है कि उस वक्त अमृत संचार नहीं होया। एक घटना सन 1675 दी है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता तुर लगे ने, ते गुरु गोबिंद राय जी ने पिता दे चरणां विच नमस्कार कीती है, ते उस वक्त एक शब्द कहा सी। विद्वाना ने उस शब्द नूं सांभ के रखे, कहन लगे ऐ पुत्र गोबिंद राय खे बेटा, जिदे कोल तेरे वर्गा घर विच पिछे पुत्र होवे ओनू किसे तरह दी चिंता ते झोरा नहीं, ओनू किसे तरह दा डर नहीं। ते सतगुरु ने कहा सी बेटा झुकना नहीं, जुल्म दी हनेरी सामने अड़ खलोना। ते गुरु तेग बहादुर जी ने जान लग्या 9 साल दे अपने बच्चे नूं कुट के छाती न लाया।
ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ,

मैं कल अर्ज की थी, नमस्कार की थी उन्होंने भी, तो एक गल कही सी मां, इस संसार का मिलाप इस तरह जिवें पानी दे तिनके ने मिलते ने परत के विछड़ जाते ने, संसार का मिलाप इस तरह जिवें रुख के उपर पंछी बहिंदे ने, समा पैंदा ते उड़ जाते ने। मां इस संसार तो एक दिन हर एक ने कूच करना है, पर गुरु पिता के बचना चेते रखी। मैं भी उस दिन कोल सा जिदन गुरु पिता ने यह बचन कह सन तैनू के नानकी तेरे पुत्र ने जो कुछ कर देना है वो अजे तक किसी ने किया नहीं, बचन बापू ने किते सन, ते मां अज आशीष तू दे तेरा पुत्र अपने बापू दे बचन नू पूरिया करन तुरे। माता नानकी अपने अंदर नू घुट लिया, भावे किन्ना भी होवे आखिर मां है, ते ओ मां जेड़ी कई सालां तो पुत्र दे नाल है, जे सतगुरु करतारपुर ने तां मां नाल है, जे कीरतपुर ने तां नाल है, जे बाबे बकाला साहब आए ने तां नाल है, जे पटने दी धरती नू तुरे ने, ते कमाल दी गल माता नानकी उदो भी नाल साहब ने तुर लग्या, मां नू नमस्कार कीती। उस तो बाद अपने महल माता गुजरी जी नू मिले ने, उन्हां नू तरवास दिता है, ते जदो संगत पिछे तुर लगी ते सब ने सतगुरु ने सब नू हदायत कीती, बाणी नाल जुड़ियो, उस अकाल पुरख का सिमरन करियो, अज तो बाद गोबिंद राय तुहाडी अगवाई करनगे, ते जो कुछ ए करन कदी तर्क ना करियो, इन्हां दी हर कीती होई नू सत करके मन लैण। गुरु तेग बहादुर जिस आनंदपुर नू हत्थी वसाया, अज उस आनंदपुर नू छड्या, ते पंज गुरु के प्यारे सिख नाल तुरे ने, सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दे नाल कईयां ने जिक्र भाई जैते दा कीता है, पर कुछ विद्वान कहिंदे ने भाई जैता जी दिल्ली दे रहण वाले ने, गुरु तेग बहादुर तुरे ने, ते सतगुरु ने अपना पड़ा इथों तुरदियां पटियाले शहर दे नेड़े जिथे सैफां बाग पिंड सी, इथों फकीर सी सैफदीन मुसलमान, एदे कोल सतगुरु टिके ने कुछ मकीने, एदे कोल उस परमेश्वर उस निरंकार की वंदना ते उस बंदे दे अंदर नूं भरपूर कीता है। ते याद रखना कल मैं अर्ज कीती सी, गुरु तेग बहादुर हर थां ते सहाई होए ने, हर एक थां ते, समुंदर विच वी जे कोई आवाज मारदा है तां किते वी बैठ के कोई पुकारदा है, ते इत्थे पुकारन वालियां विच दो अजे ने, चेते रखियो मैं जिहड़ी अर्ज कर लगा अगे प्रसंग की लड़ी जुड़नी है, दो ऐसे ने जिन्हां नूं मेरे गुरु तेग बहादुर जी ने जींदे जी ऐस शरीर विच निवाज के जाना है, ते दो ऐसे ने जिहड़े उड़ीक पै करदे ने उन्हां नूं गुरु तेग बहादुर ने शहादत तो बाद निवाजना। गुरु तेग बहादुर तुरे ने आगरे की धरती ते, एक माई बैठी है, कल्ला असीं पढ़ने आ एक आजड़ी नहीं, गुरु तेग बहादुर जदों गए ने एक माई है, ओदा नाम विद्वाना ने तीन तरह नाल दिता है, डॉक्टर फौजा सिंह ओदा नाम लिखते ने माई जसी, एक विद्वान होर लिखता है ओ लिखते ने कि माई वलैत, ते तीसरा नाम आगरे विच प्रचलित है माई भागवंती। उस माई दे तीन नावां दा जिक्र है, पर कहिंदे ने जिहड़ी ओदी भावना सी बजुर्ग हो चुकी सी, ते एक अरदास करदी सी, गुरु तेग बहादुर जी मेरे शरीर अंदर ताकत नहीं कि मैं तेरे दर तक आ सका, इस गरीबनी ने कई महीनिया की मेहनत नाल आ खदर दे बस्तर तैयार किते ने, कितना चंगा होवे जे तू मेनू निवाज जावे, मैं सुने जेड़ा भावना नाल तैनू चेते करदा है तुसी ओदी शरदा नू पूरिया कर दियो, मेरे सच्चे सतगुरु एक वारी आके इस गरीबनी दा चोला प्रवान कर लवो। विद्वान कहिंदे ने गुरु तेग बहादुर आगरे गए ने, ते उत्थे जदो पहुंचे ने उस माई दे घर गए ने, ते उस माई ने जदो कीते दीदार, ते पहला ता अखां दी जोत घटे दिशिया नहीं, ते पुछदी है कौन हो, ते भाई मती दास ने क्या आवाज दे के मां गुरु तेग बहादुर जी आए ने, मंजे तो उठी सतगुरु दे चरणा विच कीती नमस्कार, गुरु तेग बहादुर जी दे चरण अपने नेत्रां दे नीर नाल बैराग नाल धो दिते ने, ते परत के अपने हथां नाल गुरु तेग बहादुर जी नूं वस्त्र भेट कीते।

होते हैं। परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवन कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैयां विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां, जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विच्चों एक दा किरदा एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, इह बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पहरन नू बस्त्र देंदा है, खान नू भोजन देंदा है, तन ते पान वास्ते सुंदर गहने लैके देंदा है, ते ए खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इनू पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इको उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ए केवल तुहाडे मन दा भुलेखा है कि देण वाला साडा बापू वे साडा पिता है, नहीं किसे दा कोई भाग नहीं दे सकदा ले सकदा, देण वाला केवल एक निरंकार है, मैं तां उहदा दित्ता खानी हां, उहदे दित्ते हुए वस्त्र पानी हां, उस निरंकार दे दित्ते हुए तन ते गहने पाए ने। आपस विच ए लड़ झगड़ के उठ गईआं ते चारां ने जा के दुनी चंद नूं कहा सी कि देख असी तां कह रहीआं बापू तेरा दित्ता खानियां वां, पर उह कह रही है देण वाला कोई होर है। जदों बुलाया गया ते इस बच्ची ने बेबाक हो के कह दिता कि देण वाला बापू केवल एक परमेश्वरी जिहड़ा पत्थर दे कीड़ियां नूं रिजक देंदा है, जिहड़ा पाणी विच पैदा होए जीवां नूं रिजक देंदा है, जिहड़ा धरती ते पैदा होई बनस्पति नूं रिजक देंदा है,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पै ए भी उस करतार दी दित्ती दाते एवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कहन लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वह करतार वह निरंकार तेरे भागा जे होवे तू अपने भागा इतने नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपने विचार की सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता है, पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलियत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन, पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता है, पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता है, अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नू अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरना अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

साबिद तुम हर जानो आपे, खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे खम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूक।

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

सिख विद्वान लिखते ने इधर राणी सदा कौर कोई है कन्हैया मिसल दी ओदे मालक नू भावा के मां सिंह ने मारिया जदों ने देखा कि मां सिंह की ताकत वादी पई है उन्हें उस वक्त सारे वैर विरोध भुलो के भुला के अपनी धी महताब कौर का रिश्ता रणजीत सिंह दे नाल कर दिता। मां सिंह अजे जिंदा है किन्ने जदों एदा रिश्ता होया ते सरदार मां सिंह गया गुजरात भावा के ए आपसी लड़ाई मिसलां दी सी रणजीत सिंह भी उत्थे पहुंचिया है ते रणजीत सिंह अपने बापू नाल मां सिंह उस मौसम विच खाना चंगा ना मिलन करके बीमार हो गया ते इन्ना कु बीमार होया एदा शरीर बिलकुल रह गया इंज भासिया के जिवें मौत बिलकुल नेड़े पई आउंदी। ए गुजरात तो वापस परतिया अपने पुत्र रणजीत सिंह नूं उत्थे सिख विद्वान किन्ने दस्तार दे के आए मिसल नूं क्या अज तो बाद मेरा पुत्र रणजीत सिंह तुहाडी अगवाई करेगा। छोटी जी उमरे मां सिंह अपने घर वापस गुजरां वाले पहुंच गया है ते रणजीत सिंह ने पहली जंग बापू तो बाद ओ जीती है ते जदो जंग जीती सुनेहा भेजिया कि अज तेरा पुत्र मुहिम नूं फतेह करके आ रहा है ते मां सिंह दी ओ आखरी जित सी। इस खबर तो बाद मां सिंह जिहड़ा ओ चलाना कर गया 27 साल दी उम्र विच मां सिंह चलाना कर गया। रणजीत सिंह ने अपने बापू दा संस्कार आके हथी कीता। उस वक्त एदी मां राज कौर ने ते एदी सस सदा कौर ने एदे उत्ते इन्ना कु हथ रखिया इस बच्चे नूं इन्ना जोड़ के रखिया कुछ समा ए उदास होए सिख विद्वान मानदे ने पर जदों कुदरत ने साथ दिता फिर रणजीत सिंह जेड़े पासे भी इन्हें पैर वधाया ए गल चेते रखियो जित ने एदे पैरां नूं चुमिया है कोई थां ऐसी नहीं जितो रणजीत सिंह ने हार दे मुंह नूं तकिया होवे। रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा कीता है ए सन 1801 दी घटना जदों सिख राज कायम हुंदा है इन्हें लाहौर ते कब्जा कीता है ते लाहौर दी प्रजा ने खुद कहा रणजीत सिंह नूं अजे महाराजा नहीं बनिया कि लाहौर दी प्रजा दे तीन हाकम ने भावा ए सिख सरदार सन आपस विच लड़दे ने तू इत्थे आ के कब्जा कर तेरे राज विच सानू सुख मिल। रणजीत सिंह लाहौर पहुंचे इन्हें जदों इत्थे कब्जा कर लिया ते सन 1801 दे अंदर जितने भी सरदार ने जितने भी अहलकार ने इन्हां ने सलाह की कि रणजीत सिंह नूं महाराजे दा खिताब दिता जाए। शुरू तो नहीं 1801 दे अंदर इकट्ठ होया है रणजीत सिंह नूं खिताब देना चाहते ने ते अगो इन्हें उत्तर दे दिता सी नहीं मैनू खिताब ना दियो मैं ता प्रजा दा सेवक हां। जदों उन्हां ने फिर वार वार कहा नहीं रणजीत सिंह तेनू महाराजे दा खिताब देना है आखिर ते ओ मन गया ते वैसाखी वाले दिन इकट्ठ कीता। प्यारियो दूरों दूरों दूजियां रियासतां दे मनुख भी आए सिख सरदार इकट्ठे होए लाहौर दा कोई गुरुद्वारा नहीं जिदन महाराजे दा खिताब मिलना है हर गुरुद्वारे दे अंदर अखंड पाठ प्रारंभ किया गया सी। मंदरां विच पुजारियां ने प्रार्थनावां कीतियां इथों तक के पहला समा सी लाहौर दियां मस्जिदां विच भी मुलाणियां ने दुआ कीती या रब रणजीत सिंह नूं लम्मी आरबला दई एदे राज दे अंदर असी आजादी दा निग माण सकी। जिदन अखंड पाठ साहिब दे भोग वैसाखी वाले दिन पाए गए दरबार सजे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कीता देखो अज सिख राजे दे जीवन नूं गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करके ज्ञानी गुरमुख सिंह ग्रंथी सन उन्हां ने गल विच पल्ला पा के अरदास कीती ते रणजीत सिंह ने कहा सी ज्ञानी जी तुसी बड़े गुरु घर दे अनन सेवक हो एक अरदास करियो कि गुरु नानक साहिब एक कृपा करी रणजीत सिंह नूं ओ जित दई जिस जित विच गुरु मैं तेरा अदब सत्कार कर सकां मैनू ओ कामयाबी दई जिदे नल तेरे घर दी शोभा होवे मैनू ओथे कामयाब ना करी जिथे मैं देखा के तेरी गुरमत नूं खोरा लगदा होवे। कहिंदे उस वक्त ज्ञानी गुरमुख सिंह ने अरदास कीती अज चार चपेरे रणजीत सिंह दे फुल्लां दी बरखा कीती गई ते बाबा साहिब सिंह जी बेटी उन्हां साहिब वाले उन्हां अपने हत्थां नाल शेरे पंजाब नूं तिलक दिता। पहला रणजीत सिंह सी शुकर चकिया मिसल दा

मैं किता ना जाता हराम खोर हूँ क्या मुख देशा हूँ क्या मुँह देशा दुष्ट चोर नानक नीच कह विचार तान रूप रहा करता सब जियो पिंड मुख नकदिया वर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न भोगानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न भोगानी जिन दिए सोचित ना आवही पशु हों कर जानी ना हों जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परमवत नानक दिन की शरणा जिन तो नाही विषया परमवत नानक तिन की शरणा जिन तो नाही विषया परम सम्मान योग सैल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों अज हफ्तावारी जो विशेष दीवान सज रहे ने इस दी हाजरी आप जी ने पढ़ी है अमृत बचना दा कीर्तन गुरु सवारे असानू सरवण करा रहे सन और कीर्तन दा प्रकरण केवल एक सी मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना तू जल सल मैयल पार को लेना इस ही केवल विषय ऊपर गुरमुखा ने कीर्तन किया। आओ इसे नु ही आधार बना के आप जी नाल कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ पानी है अपने फुरलिया नू अपने अंदर नू टिकाण दा यतन करिए गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने टिक के जदों कीर्तन सरवण कीता ते पाईशन हुई हजूर दा ओ बचन आप नू सांझा कर रहे सन हे मेरे करते पुरख वाहिगुरु जी पहली गल अज टीकरा तेरा किसी ने अंत नहीं पाया दूसरा बचन पानी विच झाती मारना वा जल विच भी तू है थल विच भी तू है पुलाड़ विच भी तेरा अपना ही स्वरूप है ते हर एक दे अंदर तेरी अपनी जोत टिकी है। इस गल नूं आपां सारे चंगी तरह समझने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने
परमात्मा नूं किसे एक थां ते निश्चित नहीं केवल कीता कि इस थां ते परमात्मा रहिंदा है, इस तों बाहर परमात्मा नहीं। ना किसे चार दीवारी नूं, ना किसे मरी नूं, ना किसे कबर नूं, ना धरती दे एक टुकड़े नूं इह नहीं कहा कि परमात्मा केवल इत्थे रह रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने उस एक दी सर्व व्यापकता दा जिक्र कीता है। ओह एक है पर एक होण दे बावजूद भी ओह सर्व व्यापक है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना ने उस सर्व व्यापक नूं बयान कर दिया है। ओहदी जोत दा टिकाणा हर एक दे विच मनिया है। आपां ने सरवण भी कीता ते रोज असीं इह बाबे नानक दे बचन पढ़ने हां कि सब में जोत जोत है सोए, कि सारे विच ओहदी अपनी जोत है, तिस दा चानन सब में चानन होए, ते उस जोत दा चानन सारियां दे विच है। मैं सिर्फ इस विषय ते अर्थ करनी चाहना जे ओह सर्व व्यापक है, ओहदी सारियां विच जोत मौजूद है, की कारण कि एक बंदा निंदक बन गया, दूजा बंदा रब की सिफत पिया करता है। निंदिया वाले विच भी ओहदी जोत है। एक बंदा संत बन गया, दूजा बंदा साखत बन गया। एक बंदा ज्ञानवान बन गया, दूसरा इंसान मूर्ख हो गया। एक बंदा टुटिया होया नूं जोड़न लग पिया, एक बंदा जुड़िया होया नूं शब्द बोल बोल के तोड़न लग पिया। जे सारियां विच परमात्मा दी जोत है, सारियां विच ओह परिपूर्ण परमेश्वर है, ते एक चंगा क्यों ते दूसरा मंदा क्यों? हजूर ने बाणी विच फरमाया कि सब में जोत जोत है सोए, तिस दा चानन सब में चानन होए। ओह एक हो के सारियां विच किवें विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों मैं कुछ बेनतियां करनियां चाहुंदा। गुरमुखो एक हुंदा कथा कर लैनी प्रमाण दे देंगे कि सारियां विच ओहदी जोत है। दूसरा है कि सारियां विच ओहदी जोत नूं अनुभव कर लैना। दूजे विच जोत असीं कित्थे देखनी है, क्योंकि अजे तां अपने विच भी यकीन नहीं आउंदा पिया कि मेरे अंदर भी परमात्मा बैठा है। अपने जीवन विच नहीं झाती मार के देखिया कि मेरे विच भी ओहदी जोत है। गुरु अर्जुन साहिब जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच उस एक दी गल करदिआं इह बख्शिश कीती भगतां दे बचन दर्ज करके उदाहरणां दित्तियां कि इक सारियां विच किवें सर्व व्यापक है। भगत नामदेव जी दा बचन आपने सरवण कीता है ते सबै कट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। सारियां कटां विच ओह परमात्मा बोलदा है, ओहदे तों बिना दूजा होर कोई नहीं। ते फिर भगत साहिब ने इस गल नूं होर समझाउण लई शब्द वरते, एकल माटी कुंजर चिंटी पांजन है दो नाना रे, कि जिवें एक कुमार भांडे करदा है मिट्टी लिया के, एक थां तों मिट्टी लियांदी, उस मिट्टी नूं एक पानी विच भेंग के गुन्निया, परत के चक उत्ते ओहदे भांडे तैयार कीते, उस मिट्टी विचों एक निक्का जिहा दीवा बना दिता, उस मिट्टी विचों उहने एक बहुत वड्डा सारा घड़ा बना दिता, उस मिट्टी दे विचों निक्के निक्कियां उहने प्यालियां बना दित्तियां, उस मिट्टी दे विचों वड्डे वड्डे उहने बर्तन साज दित्ते। पर साहिब किवें चेते रखियो, जदों उसने बर्तन बनाए मिट्टी एक है पानी एक है, ते जिस अग दे विच उहने रखे ओह अग भी एक है, पर हे मालका एक मिट्टी दे बने ने कीड़ी तो लैके खाती तक एक भांडा ओहे जिहड़ा सारी जिंदगी अमृत लैके अपने अंदर टिकया है, एक भांडा ओहे जिहड़ा सारी जिंदगी जहर नाल भरिया रहिंदा है। इह की है तरीक है? हजूर दे बचन असीं पढ़े, एकल माटी कुंजर चिंटी भांजन है बो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना है। ते जदों गुरु नानक साहिब दे बचन पढ़ने हैं ते एक बचन असीं रोज पढ़ने, आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, भांडे बनाण वाला परमात्मा तू आप है। किते चोर दे रूप विच भांडा तुरिया फिरदा है, किते साध दे रूप विच तुरिया फिरदा है, किते

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, हफ्तावारी जो रात्रि दे विशेष दीवान सजदे ने, इस दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी कोणा पासों सरवण कीता है। दो शब्द उन्होंने कीर्तन विच असानू सरवण कराए ने। पहला शब्द सी, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवान। सहज धन गुरु रामदास कृपालू जी का उचारण किया हुआ ये शब्द, जिस विच दातार ने उस परम पिता परमेश्वर वाहगुरु जी के गुणा नू जिथे बयान किया है, उथे एक सानू गल दृढ़ करा दिती कि मैं अपनी जिंदगी विच केवल सहारा परमात्मा का लिया है। दुख होवे, सुख होवे, खुशी होवे, गमी होवे, मैं अपने साईं तो बिना कभी किसी अगे पुकार नहीं की। शब्द आपां सरवण कीता है, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। एक कृपालता होर गुरु रामदास जी ने कीती, कहिंदे कई बारी असी परमेश्वर दे गुणा जी जदों गल करने हैं ते कोई घटना हैरानी पैदा करने वाली वापर जाए ते असी सोचने हैं कि यह हो सकता है। मेरे धन गुरु रामदास जी ने नाल एक प्रमाण उदाहरण वजो दिता, कहिंदे परमेश्वर की इन्नी वडियाई है, जिस बंदे नू कोई नहीं जानता, जे परमात्मा मेहर करे तो उन्हू सारी धरती का बादशाह बना सकता है। महाराज ये किवें हो सकता है? साहब कहिंदे ने हो सकता है, जो असंभव है वह संभव हो सकता है। ते नाल उदाहरण की दिती, कहन लगे देख उन्हें बकरी ते शेर नू एक थां ते बने। अज तिकड़ा कभी तके है कि बकरी ते शेर एक किले ते बजे कौन? साहब कहिंदे ने विचे धरती, विचे पानी, विच कास्ट अगन तरी जाए, देख तीन हिस्सा पानी है, एक हिस्सा धरती है, ते परमात्मा ने इस धरती नू अपनी खिच दे के चार चुफेरे पानी होने के बावजूद टिकाया है। यह तो मानो जिवें उन्हें बकरी ते शेर दोनों टिकट से बने हुए, चार चुफेरे पानी है। आपां जदों गलोब नू तकने हैं, चार चुफेरे पानी पानी सानू नजर आउंदा है, धरती का किन्ना कु हिस्सा है? साहब कहिंदे विचे धरती, विचे पानी, विच कास्ट अगन तरी जाए, बकरी सिंह एक तय थाए रख है, मन हर जप भरम पाओ दूर कीजे। जे पानी विच धरती नू टिकाई बैठा है ते मना कल्पी ना जा, रब नू सिमरिया करो, तेरे भी डर जरूर दूर करेगा। दूजा शब्द गुरमुखा ने सरवण कराया कि शाम सुंदर तज नींद क्यों आई, महा मोहनी दूता लाई। शब्द विच परमाणु ना बड़े बैराग दे भिजे दिते। मैं इस करके अर्ज कर रहा क्योंकि आपां इह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विचों सरवण कीते ने, ते इक मैं बेनती कर दिया गुरु के सिखो, राग तां इक भांडा है। मैं कहना
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੋਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ,

0: ने केवल दर्शाया है कि सब कुछ चंदू ने किया है ते मैं यतन करांगे इस प्रसंग नू कांच छांट के गुरमत की रोशनी विच पेश किया जाए। अज आप नू पता है कि चंदू की बच्ची का रिश्ता मुड़ गया है, इस करके नहीं कि गुरु साहब नफरत कर दे। जदों ने चुबारी की इत मोरी नू लाण की गल कही, गुरु के सिखो गुरु नानक साहब का कर किसी बादशाह का मुताज नहीं है। तुसी हैरान होवोगे कि गुरु गोबिंद सिंह जदों अजे 4 साल दे सन ते पटना साहब की धरती से नवाब की असवारी आई ते अगे आने वाले ने कहा झोके नमस्कार करो सिजदे करो, ते गुरु कलगीधर जी ने छोटे छोटे बच्चों कहा सजदे नहीं आंदा पिया इनू दंदियां खराओ। जदों नवाब नू दंदी खराइया कहिंदे परत के गुरु तेग बहादुर जी नू चिट्ठी लिखी गई कि तुहाडे पुत्तर गोबिंद ने अज नवाब की असवारी आई ओदी खिली अड़ाई का कर समझाओ। ते गुरु तेग बहादुर पता उत्तर की देंदे ने, कहिंदे ने गोबिंद जो किया सो भला ना ब्याजे। ये हुक्मनामा है, गोबिंद जो किया सो भला किया। कहन लगे सरकारी एहलकार आए अव्वल ता मथे नहीं लाना, आए पवानी देनी सराबी नहीं। के पवानी खड़े करना सराबी नहीं, क्योंकि बाबा नानक पातशाह है ते पातशाह बादशाह दे दरबार सामने झुकदा नहीं। गुरु के सिखो अज देखो चंदू इन्हे अपने वालों धमकी भरिया पत्र भेजे कि जिवें तुहाडे बाप नाल कीता है इसे तरह गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहिंदा तुहाडे नाल कीता जाएगा। गुरु हरगोबिंद साहब ने अगो उत्तर दिता, घबराई ना कि चेते रख असी कृपाना दो भाइया ने ते पाइए इस करके ने तेरे वर्गे दुश्मन नूं तेरे वर्गे जालम नूं सोधन दे ले। ओ जले गए ने जेड़े दूत आए सन ओ अज चंदू नूं दसदे ने। चंदू बादशाह दे सामने पेश हुंदा है ते केड़ियां केड़ियां गल्लां गुरु हरगोबिंद साहब दे संबंधी कहिंदा है असी अज ये वाचनियां ने, भावें समा भूमिका विच ज्यादा लिया इस करके क्योंकि प्रसंग की लड़ी जोड़नी। साहिब धन गुरु हरगोबिंद साहब कृपा करन, आओ कुछ मिनट आपां इस प्रसंग नूं वाचिए। विचार आरंभ करन तों पहलां बख्शो असीस और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।
1: दोहरा श्री हर गोबिंद चंद को बोलन हर व्यवहार।
0: ये जेड़े दूत आए ने दिल्ली तो धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे कोल, जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने वीर रसी शब्दां विच इन्हां नूं मुखातब करके कहा कि सानू कान नहीं चंदू दी, सानू परवाह नहीं उस दीवान दी, उस वेले ये दूत अपने अंदर इस सुनेहे नूं लै के दिल्ली गए सन।
1: सुन चंदू चिंता अदक
0: चंदू ने जदों ये गल सुनी थी मेरे बार खिलाफ गुरु हरगोबिंद साहब ये शब्द पे बोलते ने, अंदर नूं चिंता भी लग गई, अंदर घबराहट आई। पता नहीं कि अपने पिता जी की शहादत तो बाद ये की कुछ मेरे नाल कर देना।
1: जो पई मेहमाने मम सुता सगाई
0: पड़ी तो
1: पिता दिशा दिख त्रास ना पाई।
0: कहन लगे भी ए मेरी बच्ची दा रिश्ता नहीं लैणगे, इन्हां दे पिता नूं भावें असी तशद्दद दे के तशीए दे के खत्म कीता है पर बाप दी शहादत दा इन्हां उत्ते कोई भय नहीं कोई डर नहीं, ए तां अगे नालों वध उच्चा बोल दे सन।
1: बदत बदत बद गयो दरोदा अजी ना मेरो मानत क्रोधा।
0: कहिंदा देखो भी जिस बंदे दे बाप नूं ने शब्दे ही वरते, आपां गुरु हरगोबिंद साहिब कांग जिन्हां नूं तत्ती तवी ते बाया होवे, जिस दे बापू दे शीश विच रेता पाया होवे, जिन्हां नूं उबलती देग विच बिठाया होवे ते अजे भी ओहदे मन विच मेरा भय नहीं, मेरे गुस्से नूं मेरे अंदर दे क्रोध नूं ओह समझिया नहीं। ते गुरु अर्जुन साहिब ने एक गल शहादत तों पहलां कही सी, एक उर्दू का अदीब लिखदा है इथे अर्ज भी कीती सी, तत्ती तवी ते बैठियां शब्द वरते सन कि मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा।

नीच मूर्ख रे मान करो तुझे उपरे मेरे प्रीतम प्यारी हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी गुरु सवारियो जी असीसा देंदे होए अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही पिछलेरे दिनां दी लड़ी विच्चों जकरिया खां बहुत कहर कर रहा है। नादर शाह दे बोल उदे हिरदे विच लड़क देने ओ अपनी अख नाल हुण सिख नूं वेखना नहीं चाहुंदा, इसलिए उन्हें हदों वध कहर करना शुरू कर दिता। इहदे दरमियान मस्सा रंगड़ नूं हरिमंदर साहिब दे अंदर उन्हें बिठाया, बेअदबी करवाई। अणखी सूरमिया ने मसे रंगड़ दी लोथ हरिमंदर साहिब अंदर तड़फदी रही, पर उहदा सिर वढ के बीकानेर खालसे दे दर ते लिजा के ठोकर मारी। पापी दा अंत होया। मसे रंगड़ दी मौत ने जकरिया खां नूं होर भी हिला के रख दिता। मेरे इतने पहरे रखण दे बावजूद, मेरी इतनी ज्यादा तकड़ाई करन दे बावजूद, कमाल है, जिहड़े मेरे चंगे बंदे ने, चुने हुए बंदे ने, उहनां दा सिर वढ के कोई लै जाए शरेआम। इह गल होर भी उहनूं तड़फण लगी, उहनूं होर भी चुभी। हुण उहने कोशिश कीती भी मैं जिहड़े होर भी लोग ने उन्हां उत्ते होर भी सख्ती कर सकां। एक पल हुण इत्थे समझना पैणा विचार नूं। उस वेले दो तरह दे सिख हुंदे सन, जिहनूं करम सिंह स्टोरियां ने लिखिआ है, एक मिलवर्तनीए एक ना मिलवर्तनीए। मिलवर्तनीए सिख उन्हां नूं कहिंदे सन जिहड़े सरकारे दरबारे भी बना के रखदे सन। उन्हां दा जिवें किवें होया सरकार दे असूलां नूं भी पालना करना, ते उवें उन्हां ने अपनी जिंदगी दे दिन गुजारने। पर ओह अंदरों सिखी नाल पूरे स्नेह सन, अंदरों पूर्ण सिख सन, सिखी नाल कोई फैसला नहीं सी। ते उन्हां ने फिर जदों कोशिश कीती भी सुखा सिंह महताब सिंह इन्हां नूं ना पकड़ सकिया, जोर ना चलिया, ते उन्हें एक होर कहर करना शुरू कर दिता भी जिहड़े मिलवर्तनीए सिख सन, जिहड़े रहिंदे घरां विच सन पर लेकिन ओह सरकार दे असूलां नूं भी मन के सिखी नूं पाल रहे सन, फिर उन्हें मिलवर्तनीए सिखां ते कहर करना शुरू कर दिता। उन्हां मिलवर्तनीए सिखां विचों एक सिख दा जिक्र अज आपां सांझा करना है। इह है पूले पिंड दा रहिण वाला, अमृतसर साहब दे इलाके दे विचों ही, पूले पिंड दा रहिण वाला गुरु का सिख भाई तारू सिंह है। पिता छोटी उम्र चढ़ाई कर गया, मां दे मन विच तमन्ना है मैं अपने पुत्र दे हिरदे विच सिखी सिदक रख दिया।
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਛਕਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ ਉਹ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਪਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ

तेहि ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साधु संग नानक जस गयो जो प्रभु की अत प्यारी साधु संग नानक जस गयो